दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माथी ये दलित्री अति थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह करी ज्येष्ठ बाबू।

गिरिजारूपधारी पूजा करे निरपति वे गरी भवति बारी। विनती करे वरुण को सवदात आओस यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दातै नउम्रिदिनु छैन बलि भनेर देखिन्छ शास्त्रहरूमाई कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्की आए राजा खुशी भइन्वार नगर नलाए।

0: कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा
1: छोरा
0: कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून साहब श्रृंखली शिवसा सुदामे की नारी कर चीन भारी विपत्ति पति चेताई विमती कर चिंका पिटरले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली है बंकन कहीं ज्योति समना देव के सौगर मन देव चंगा करिकुन मिलन चुदारी का हर्षित मुलाका नगरी में इच्छा वर्तन में विचार मुठबे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ लगी गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन्म बालका ओ जननी बालका ओ जगा

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनौ सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुले जियौ।
1: यो रेडियो सैलुङ को समय सूचक हो। यति बेला साँझको छ बजेको छ।

नमस्कार, रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पति प्रसाद सापकोटा। आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन् 2026 मे 7 तारिक वैशाख 24 गते बिहिबार पञ्चमी तिथि। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षण कल्पय भरी।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल, जफेबाट आको म। एउटौ शङ्खका पाला भूषित करौ, मालास्ती माला धरौ, देवौ दरौ तिसमा चानन निलौ, नागरी गोवर्धनौ, त्रिरक्षे बलिदक्षे।